0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर के हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को पहले आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। भारत ने दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर के हों। कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि आज भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है जो उसकी आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है और दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान वाहनों की बिक्री 20% से अधिक बढ़ी है। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का निर्यात अब 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है और घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह आज गृह मंत्रालय की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: अमित शाह का आज का दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से जुड़ा है। गृह मंत्रालय की बैठक में गोवा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बाद में बीजेपी के नए राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। दिन के अंत में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक भी होगी। कल अमित शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान लेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
3: जो निर्देश होगा, जो भी प्रधानमंत्री जी का, वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ। तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: विदेश राज्य मंत्री

0: कीर्तिवर्धन सिंह चार दिन की यात्रा पर कल सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। श्री सिंह की ये सऊदी अरब की पहली यात्रा है। वे सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और जलवायु पर्यावरण, जल तथा कृषि उपमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री सिंह सऊदी अरब में भारतीय मूल के लोगों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, उद्यमियों तथा पेशेवरों से भी मिलेंगे। वे सऊदी में कार्यरत भारतीय कामगारों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: नई दिल्ली में इस महीने की 12 और 13 तारीख को आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेशक, वित्त मंत्री और उद्योगपति शामिल होंगे। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समानांतर होगा। सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, भरोसेमंद बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। एक रिपोर्ट।
4: संप्रभु धन कोष, पेंशन कोष और परिवार कार्यालय कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमेरिकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में हुए माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। अदालत ने दो महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सजा पर फैसला 16 सितम्बर को होगा। दिल्ली में नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली पुलिस की अपराध नियंत्रण शाखा ऐसी आपराधिक गतिविधियों की पहचान के लिए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे गलत लेबल वाली और नकली दवाओं के निर्माण और वितरण को रोका जा सके।
5: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। इसी लगातार निगरानी और कार्रवाई के तहत दिल्ली अपराध शाखा ने इस साल अप्रैल में दिल्ली में बिना लाइसेंस वाली जगह से गलत लेबल वाली और खराब गुणवत्ता की रेबीज वैक्सीन जब्त की थी। पिछले महीने की 27 तारीख को एक सूचना के जरिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर से कहा कि वे अपने इंस्पेक्टर स्टाफ को अलर्ट करें और दवा के गलत लेबल वाले बैच की आवाजाही, वितरण और उपलब्धता पर कड़ी नजर रखें। DCGI ने यह भी पुष्टि की है कि संबंधित बैच का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश में निर्यात नहीं किया गया था। अस्पतालों, क्लिनिकों और सरकारी हेल्थ केयर सेंटरों में दी जाने वाली वैक्सीन सिर्फ लाइसेंस वाली फार्मेसियों के जरिए ही दी जाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मेलाघाट और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के पुनर्वास मामले में देश के सबसे सफल स्थलों के रूप

0: रूप में उभरे हैं। इन केंद्रों में गिद्धों को पाला गया और उनके जीवित रहने की दर उत्साहजनक रही है। एक रिपोर्ट।
1: बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के अनुसार दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच दोनों अभयारण्यों में कुल 29 गिद्ध छोड़े गए थे। BNHS ने कहा है कि यह सफलता दर्शाती है कि गिद्धों को पर्याप्त शिकार और कम मानवीय हस्तक्षेप वाले बाघ अभयारण्यों में छोड़ना एक प्रभावी तरीका साबित हो सकता है। ये परिणाम देश में घटती गिद्ध आबादी के संरक्षण और पुनर्स्थापना के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हैं। प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने से गिरिडीह के मर्सी अस्पताल में निधन हो गया है। देर रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन झारखंड की अस्मिता, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई को समर्पित कर दिया। ईरान की नौसेना ने होर्मुज जल डबरू मध्य से गुजर रहे 3 तेल टैंकरों और अमरीका से जुड़े 3 जहाजों पर हमले का दावा किया है। इससे पहले अमरीका ने फारस की खाड़ी और ओमान सागर में 3 ईरानी तेल टैंकरों पर हमला किया था। महिला क्रिकेट में दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर और 1 गेंद में महज 55 रन बनाकर आउट हो गई। ये T20 में उसका अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की ओर से स्पिनर श्री चरणी और प्रेमा रावत ने 3-3 जबकि दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट हासिल किए। ये मैच हरमनप्रीत का बतौर कप्तान 150वां T20 मैच था। वे पुरुष या महिला क्रिकेट में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान हैं। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका मुकाबला आज चीन के हेजीटिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज में दिए गए वक्तव्य को प्रमुखता दी है। युवा ही विकसित भारत बनाएंगे, मुझे पूरा भरोसा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री की युवाओं को सलाह को सुर्खी बनाया है, बड़े सपने देखें और पूरा करने में जान लगा दें। जनसत्ता ने खतरा शीर्षक से IIT मंडी के शोध को प्रकाशित किया है। हिमाचल में आकार में तेजी से बढ़ रही 9 हिमनद झीलों की पहचान हुई। एक दशक में हिमालय क्षेत्र में हिमनद झीलें करीब 30% बढ़ी। 457 साल बाद बदलेगा दुनिया का नक्शा, लिखता है राजस्थान पत्रिका। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित, भारत सहित 164 देशों का इक्वल अर्थ मानचित्र के पक्ष में वोट। वर्ष 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह वर्ष 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। अमर उजाला ने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को प्रमुखता दी है। 1200 बेकाबू AI एजेंट्स ने इंटरनेट पर बना ली खुद की सरकार। पकड़े जाने के डर से मिटाए सबूत, ओपन AI और एंथ्रोपिक ने रोकी सबसे ताकतवर मॉडल की ट्रेनिंग। नवभारत टाइम्स ने परवरिश पृष्ठ पर AI की बढ़ती दखलंदाजी को प्रमुखता दी है। पेरेंट्स की जगह तो नहीं ले रहा AI, मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे बच्चों को चैटबॉट से क्या हो रहे हैं नुकसान। पत्र ने बचाने के रास्ते भी दिए हैं। चैट हिस्ट्री जरूर देखें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय दें, AI को दोस्त बनने से रोकें और हर जवाब तुरंत मत लेने दें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। भारतीय युवा परामर्श, लेखा, वित्त और कानून से जुड़ी ऐसी संस्थाओं का निर्माण करें जो वैश्विक स्तर की हों। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। NIA की विशेष अदालत ने 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हत्याकांड में 10 माओवादियों को दोषी ठहराया। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आई ब्रिक्स सम्मेलन में 500 से अधिक संस्थागत निवेश

0: जिन विषयों का उल्लेख करते हैं वो हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, हमेशा ही प्रेरित करते हैं। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है मन की बात में अभिनेता उत्तम कुमार का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तम कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। तो किस प्रकार से उन्होंने समाज को कुछ दिया और उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलू क्या थे, आज इस कार्यक्रम में जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव हैं, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है फिल्म क्रिटिक के तौर पर। हमारे साथ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, विभिन्न चैनल्स पर पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। पिछले 50 वर्षों से आप एक सक्रिय पत्रकार के रूप में समाज के बहुत सारे पहलू समाज को ही दिखाते रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। संजीव जी आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदीप जी आपका स्वागत।
2: धन्यवाद बहुत बहुत।
0: तो आइए श्रोताओं, अब सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अभिनेता

0: उत्तम कुमार का उल्लेख किया है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, महानायक उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलेंथ्रोफी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबेन।
0: तो आइए अब अपने सवालों के माध्यम से हम जानना शुरू करते हैं अभिनेता उत्तम कुमार के व्यक्तित्व को और साथ ही समाज से वो किस प्रकार से जुड़े थे इस बारे में। उत्तम कुमार का नाम जहन में आते ही एक करिश्माई मुस्कान सामने आती है, एक रौबिला अंदाज और कैमरे पर सहज अभिनय का जादू हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। लेकिन पर्दे की रोशनी और तालियों की गड़गड़ाहट से परे उत्तम कुमार का एक और रूप भी था। क्या था वो रूप? एक सहृदय इंसान, एक संवेदनशील कलाकार और एक उदार सहयोगी। और भी कई रूप थे जो हमें आज हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। सबसे पहले हम उनके अभिनय क्राफ्ट के बारे में जानना चाहेंगे और मैं संजीव जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का पहला ऐसा स्टार माना जाता है जिन्होंने थिएटर के लाउड एक्टिंग शैली को तोड़कर कैमरे के सामने बहुत ही नेचुरल और सटल अभिनय की शुरुआत की थी। तो उनके इस क्राफ्ट के बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे?
2: बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने नीलम जी, और बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये बड़ा अच्छा मौका है कि हम लोग आज उत्तम कुमार जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात प्रोग्राम में किया है। तो इस मौके पर उत्तम कुमार जी को चाहने वाले उनके अभिनय कौशल के बारे में जो भी बारीकियां हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, उन सब के बारे में जो भी सिनेमा प्रेमी है, मुझे लगता है कि बहुत ही गहराई से जानना चाहेंगे। और जो आपने सवाल किया है अभिनय क्राफ्ट के बारे में, वह एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि उत्तम कुमार जी का अभिनय जब हम सिनेमा में देखते हैं, फिल्मी पर्दे पर जब हम देखते हैं, तो उनके बारे में एक शब्द बहुत ही खास तौर पर कहा जाता है कि वह बहुत ही मासी एक्टर थे। लेकिन मासी के साथ साथ जब हम उनके अभिनय कौशल को देखते हैं पर्दे पर, तो हमें उनके मासी आमतौर पर ऐसा कहा जाता है एक्टर को कि जो बिल्कुल ही आम दर्शक होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कलाकार। लेकिन उत्तम कुमार आम से आम और खास से खास दर्शक को भी उतने ही प्रभावित करते हैं। खास कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी क्लासिक किस्म के जो दर्शक होते हैं, जो बहुत ही गुड सिनेमा को देखते हैं और अभिनय की ऊंचाई को पहचानते हैं, उनकी बारीकियों को, उसमें बहुत ही उनको सुखानुभूति मिलती है, तो वो सब कुछ हम उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में देखते हैं। तो मासी एक्टर के साथ साथ वो एक मेथड एक्टर के तौर पर भी हमारे सामने आते हैं। और जिस वक्त वो बांग्ला सिनेमा में बतौर अभिनेता अपनी पहचान उन्होंने बनाई, उस वक्त अगर हम देखें तो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब भी थे, देवानंद साहब भी थे, राज कपूर थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे। इसके बावजूद उत्तम कुमार जी की जो पहचान थी, आज की शब्दावली में जो हम पैन इंडिया कहते हैं, पैन इंडिया इम्पैक्ट छोड़ने वाला कोई एक्टर, तो वो उस वक्त, आज सोचिए कि इतने सालों पहले हमने उत्तम कुमार जी के अभिनय कौशल में एक पैन इंडिया का प्रभाव हमने देखा था। क्योंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, मेरा पूरा अनुमान है कि उनकी बांग्ला फिल्में जितनी भी हैं उनसे कम वाकिफ होंगे, लेकिन जो हिंदी फिल्में उनकी है, अगर उसमें देखे अमानुष एक बहुत ही चर्चित फिल्म है
0: जी।
2: लेकिन इसके अलावा भी उनकी दूरियां बहुत ही अच्छी फिल्म है, और भी कई सारी फिल्में हैं, दो तीन फिल्में और भी हैं, उनमें अगर हम अभिनय कौशल देखते हैं उनका, तो पता चलता है कि

0: की क्या रेंज है, मासी के साथ साथ वो कितने शानदार मेथड एक्टर के तौर पे भी हमारे सामने आते हैं। और मेथड एक्टर की जब भी बात होती है हिंदी में तो दिलीप कुमार जी का जिक्र करते हैं
1: जी,
0: मासी का जिक्र करते हैं, तो फिर देखिए देवानंद का जिक्र करते हैं। तो दोनों की क्वालिटी, बल्कि दोनों बहुत ही उनको बहुत पसंद करने वाले कलाकार भी रहे हैं, तो सारी खूबियां हम उत्तम कुमार जी में पाते हैं। तो अपने नाम को वो बिल्कुल सार्थक करते हैं, उत्तम कुमार सिनेमा के उत्तम है, सर्वोत्तम है,
1: उत्तम कुमार सिनेमा के सर्वोत्तम। जी बहुत खूब आपने कहा। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगी, हम सत्यजीत रे जी की फिल्म का अगर जिक्र करें, नायक या फिर सप्तपति हो या फिर है चिड़ियाखाना, तो किसी भी फिल्म का हम जिक्र करें, उत्तम कुमार ने अपने आप को कभी भी एक छवि में बांध कर नहीं रखा। अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए और पूरी तरह से उस किरदार को उन्होंने जीवंत किया पर्दे पर। तो एक अभिनेता के तौर पर आप उनकी रेंज के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से वो न्याय करते थे उस किरदार के साथ?
2: देखिए, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा
1: जी,
2: कि उन्होंने उत्तम कुमार को उनकी जन्म शताब्दी पर याद किया। अभी 3 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी थी
1: जी,
2: और उससे पहले उन्होंने उनको याद किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब आप देखिए, उत्तम कुमार जी को दुनिया से विदा हुए 46 साल हो गए, 1980 में उनका निधन हुआ था, और उन्होंने अपने 30 वर्ष उनके बहुत ऐसे रहे बंगाली सिनेमा में, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी, कि उन्होंने बहुत नाम कमाया, उनको महानायक कहा गया। सत्यजीत रे तक ने जो नायक फिल्म बनाई वो उसी लिए बनाई उनको ध्यान में रखकर, तो वो इस तरह का उनका वो था। लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो उत्तम कुमार को नहीं मिला। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ सब उत्तर भारत के जो सिनेमा है, हिंदी सिनेमा है, बॉलीवुड का है, इवन जो साउथ का सिनेमा है, उनके लोगों को भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल जाते हैं, उनको दादा साहब फाल्के मिल जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार को पद्मश्री पुरस्कार तक नहीं मिला जबकि उन्होंने इतना काम किया। उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले जब राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1957 में सबसे पहले उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया, जो ये बताता है कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार के काबिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनको भुला दिया गया है, बड़ा खराब लगता है। उनको बाद में फिल्म निर्माता के रूप में भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, कुल 5 बार पुरस्कार मिले। उसके बाद उनको इस तरह की सम्मान तो मिलते रहे, फिल्म फेयर में मिलते रहे, साउथ के इस तरह के मिलते रहे, लेकिन जो राष्ट्रीय पुरस्कार इस तरह के हैं, जो मतलब राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा एक अलग मान देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, या दादा साहब फाल्के जो फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको नहीं मिला। तो उनके साथ सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में की। आप देखिए सुचित्रा, उनकी जो रेंज है उसकी बात भी इसमें आ जाएगी कि उन्होंने, सुचित्रा सेन ने अपने जीवन में कुल 60 फिल्में की, लेकिन 60 में से 30 फिल्में सुजीत कुमार, 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की। तो उत्तम कुमार के साथ 30 फिल्में करना इतनी बड़ी एक्ट्रेस का बहुत बड़ी बात है, और इनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई। तो ये जो है, उसके बाद इन्होंने खैर और बहुत सारे, इन्होंने तो बहुत अभिनेत्रियों के साथ काम किया, इन्होंने 200 से ज्यादा अलग अलग फिल्में की, और उसमें कभी वो एक चोर बनते हैं तो कभी न्यायाधीश बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं, तो कभी अलग अलग इस तरह की भूमिका नायक बनते हैं। जो नायक फिल्म है उसमें का नायक का रोल है, उसमें एक देखिए जो सत्यजीत रे ने इस तरह की फिल्म बनाई, एक नायक जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के लिए कलकत्ता से, आपको कोलकाता बोले आप, कोलकाता से दिल्ली आ रहा था, तो 24 घंटे की जर्नी थी उस समय जो ट्रेन की, उसमें किस तरह एक पत्रकार को मिलती है शर्मिला टैगोर, जो शर्मिला टैगोर के साथ में इनकी बांग्ला फिल्मों भी जो भी रही, और हिंदी फिल्मों में तो ज्यादातर फिल्में इनकी उन्हीं के साथ आई, शर्मिला टैगोर के साथ। तो ये जो वो जो नायक का वो जो था, इतना बढ़िया चित्रण था इस फिल्म के अंदर। सत्यजीत रे साहब तो ऐसे वो थे जिनको सबसे ज्यादा फिल्म पुरस्कार मिले, और फिल्म जगत के भी अकेले ऐसे वो फिल्मकार हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुरस्कार लिए। अभी तो उनके निधन को इतने साल हो गए, अगर वो अभी तक रहते तो शायद ऐसा रिकॉर्ड बन जाता कि किसी को नहीं मिलता, ऑस्कर तक सत्यजीत रे को मिला। तो सत्यजीत रे जैसा अभिनेता, फिल्मकार, इतना बड़ा फिल्मकार जो इनको पसंद करे और आप इनकी इस तरह को फिल्म बनाए। बाद में भी इन्होंने सुचित्रा सेन के साथ एक फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन सुचित्रा सेन ने सत्यजीत रे के साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो सत्यजीत रे ने वो फिल्म बनाई ही नहीं। लेकिन इनकी जो रेंज है वो तो आप देखिए, कमाल की रेंज है। और आप सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा भी, इस तरह निर्माता थे, निर्देशक थे, लेखक थे, संगीत पे ध्यान देते थे, वही खूबियां उत्तम कुमार में। उत्तम कुमार ने देखिए निर्माता के रूप में 9 फिल्में बनाई, निर्माता निर्देशक पे इतनी की, और संगीत में भी उनको बहुत था, गायक के उस रूप में भी काम किया, निर्देशन भी किया, और हिंदी फिल्मों में भी जो उनकी देखिए चाह है वो बंगाल के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत महानायक कला है और उनकी अलग वो थी। और मुझे वो दृश्य भी अभी तक याद है, जब 1980 में उनका निधन हुआ तो इतना सैलाब था, जन सैलाब उभरा हुआ था उस समय के हिसाब से, इतना जन सैलाब बहुत किसी अभिनेता के रूप में शायद कभी ना देखा गया। बाद में तो हम चाहे नया जमाना आ गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल सब कवर करते हैं, उस समय तो कोई था ही नहीं। फिल्म डिवीजन ने कुछ बनाई, कुछ और लोगों ने बनाई उनकी फिल्म, कुछ सत्यजीत रे ने भी बनाया था उनका वो हिस्सा जब उनकी शव यात्रा निकली हुई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में चले गए, सबसे बड़ी बात है।
1: यानी एक अभिनेता के रूप में भी परिपक्व थे और उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे अंश हुए।

0: पहलू थे, और अगर व्यक्ति के तौर पर भी हम देखें उन्हें तो समाज से वो गहरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए इतने सारे लोग जो है जब उनके निधन की खबर उन्हें पता चली तो तुरंत वहां पहुंचे। जी यहां मैं प्रदीप जी इसी मोड़ पर आपसे आपकी पसंद का कोई गाना पूछना चाहूंगी उत्तम कुमार से जुड़ा हुआ।
1: देखिए उनके मेरे को कई गाने पसंद है, हिंदी फिल्मों के गाने तो सारे समझ में आते हैं, बंगला फिल्म के गाने भी जब सुनते हैं थोड़े अच्छे लगते हैं। हिंदी फिल्मों की बात करूंगा तो उनकी अमानुष फिल्म
0: जी,
1: उन्होंने हिंदी में आप देखिए करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन अमानुष उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्म थी
0: जी।
1: और जो मुझे अभी तक याद है दिल्ली के कश्मीरी गेट पर ब्रिटिश सिनेमा है जहां इसकी सिल्वर जुबली हुई थी अमानुष की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमानुष वहां खूब चली। और उत्तम कुमार भी बहुत खुश थे देखकर कि मेरी दिल्ली जैसे शहर के अंदर कलकत्ता में उनकी बंगाली फिल्मों ने तो बहुत जुबली मनाई, और कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो उनकी हिंदी में भी आई बंगला में भी आई। अमानुष भी ऐसी फिल्म थी, इसके अलावा एक बंदी फिल्म भी ऐसी थी जो हिंदी बांग्ला दोनों में साथ बनी, तो वो वहां बंदी वहां चली यहां नहीं चली, लेकिन अमानुष वहां भी चली और यहां भी चली। उसका जो गाना है सबसे अच्छा वो तो भूल ही नहीं सकते, जो अमानुष का टाइटल सॉन्ग है और उसको जो इंदिवर ने लिखा है, और किशोर कुमार का बहुत बेस्ट गाना है
0: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा।
1: ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, आप देखिए इतने सुंदर शब्द, इतने सादे बड़े शब्द हैं, कहीं मुश्किल बड़े शब्द नहीं है। इंदिवर ने इतने अच्छे से इस गाने को लिखा, और जो उसके अंदर चलता है बोट के अंदर शिप के अंदर शिवा टैगोर पीछे लेटी हुई है, और जब गाना सुनती है तो आ जाता है उनकी इनसे प्रेम होता है, लेकिन
0: और ये शब्द भी अमानुष
1: अमानुष बना के छोड़ा। अमानुष मतलब अभी भी लोग सोचते अमानुष क्या है, लेकिन अमानुष वही जो क्रूर व्यक्ति हो जो अपना जानवरों जैसा व्यवहार करता हो बहुत कठिन हो उसको बोलते हैं
2: अमानुष। जो फिल्म का टाइटल है उस पर मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, और बहुत ही एक रोचक प्रसंग मुझे याद आ गया है अमानुष शब्द को लेकर के, क्योंकि मैं परिचित रहा हूँ कमलेश्वर जी से
0: जी।
2: और उनका भी लेखन इस फिल्म में रहा है अमानुष में, और शक्ति सामंत साहब ने यह फिल्म बनाई थी, तो मुझे उनकी एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त कमलेश्वर जी की, और उन्होंने मुझे बताया भी था, और जब उनसे जिक्र होता था काफी फिल्मों पर चर्चा होती थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे इस शब्द को लेकर के एक मंथन हुआ था, एक बहस हुई कि क्या हिंदी वाले हिंदी के दर्शक अमानुष शब्द को क्या ठीक से समझ पाएंगे, और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर जो एक मासी एक्टर का अपना एक इमेज है वहाँ, क्या बॉक्स ऑफिस में यह शब्द उतना पॉपुलर हो पाएगा, लोग क्या देखने आएंगे,
0: और नायक की छवि से इसे जोड़ पाएंगे,
2: नायक की छवि से जोड़ पाएंगे। जो सत्यजीत ने नायक बनाई थी, इतनी ऐसी एक्टिंग है उस फिल्म में उत्तम
1: असल में इनका जो है उसके अंदर एक शराबी एक ऐसा व्यक्ति है जो दिल का बड़ा अच्छा है, लेकिन वो शराबी बन गया बहुत ज्यादा, उसका बहुत संपन्न परिवार होता था, मधुसूदन उसका नाम है, मधु जिसको बोलते हैं, और शर्मिला टैगोर रेखा की भूमिका में है, रेखा है वो, तो इनका जो आपस का प्रेम है बहुत अच्छा दिखाया है, उसमें नफरत भी है प्रेम भी है हमदर्दी भी है, एक दूसरे से दूर होते हुए पास होते हुए रहे, तो बहुत अच्छा मानुष में जो चित्रण किया था। और कमलेश्वर ने उनकी खाली इसी की नहीं और भी फिल्मों की कथा उन्होंने
2: लिखी,
1: कमलेश्वर जो है उनके साथ इतने पसंद बन गए थे कि बहुत पसंद आते थे उत्तम कुमार को, और जो फिल्में बाद में जो भी आई उसकी पटकथा भी हिंदी में जो भी फिल्में आई वो कमलेश्वर ने लिखी
0: जी। तो यानी ये गीत हमें बहुत सारी कहानियां एक साथ
1: जोड़ता है।
2: मैं उसमें यही जोड़ना चाह रहा था कि अमानुष शब्द को रखा गया सोच समझ करके, एक चुनौती ली गई
0: जी बिल्कुल,
2: कि ये नाम रखकर देखते हैं वाकई कितना पॉपुलर होता है, और ये वाकई प्रयोग जो है सफल हो गया, यह फिल्म बहुत पसंद की गई।
1: अब देखिए ना वैसे दिल तोड़ने को लेकर बहुत गाने अलग तरह के, ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अमानुष बना के छोड़ा
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ये जो गाना है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी। तो ठीक है, हम आपकी पसंद का यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव और प्रदीप सरदाना जी। तो संजीव जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, हम जब उत्तम कुमार का जिक्र करते हैं तो एक अभिनेता के तौर पर तो बहुत सारी बातें हम उनके बारे में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो नायक के साथ जननायक भी थे, क्योंकि वो जनता के दुख दर्द के साथ जुड़ते थे, वो औरों के बारे में सोचते थे, और सुभाष चंद्र बोस जी से भी उन्हें जोड़ा जाता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए आप पूरा एलोबरेट करें वो जो संपर्क है, वो जो सूत्र है उनके बीच का।
1: नहीं, जो जननायक वाली बात जो आपने कही है ना, जैसे प्रदीप जी ने जिक्र किया कि सन 1980 में जब उनका देहांत हुआ तो एक जन सैलाब उमड़ा था
0: जी।
1: तो वो जननायक का ही एक प्रभाव था। सन 1980 में तो मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो मुझे तो वो तस्वीर नहीं मालूम, लेकिन एक फिल्म अध्येता होने के नाते, एक फिल्म समीक्षक होने के नाते, जो हम इतिहास के पन्नों में जब घुसते हैं, बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, तो किसी भी फिल्म अभिनेता के बारे में, निर्देशक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। तो उत्तम कुमार जी के बारे में जो एक जननायक वाली जो छवि है, वो जो हमें एक देखने को ये मिलता है कि वो आम जनता से
0: जी,
1: आम जनता के दुख दर्द से बहुत ही जुड़ाव रखते थे, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के सामाजिक कार्य भी किए थे। आजादी मिलने से पहले की बात है, सन 1943 की बात है, जब आनंद मठ का जब मंचन होने वाला था, उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहयोग किया था। तो समाज सेवा, संस्कृति और साहित्य को लेकर के उनमें में उनके भीतर कैसा एक प्रेम था, लगाव था, वहीं से समझा जा सकता है
0: जी।
1: उसके बाद फिर बंगाल में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आई, 1978 की बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, उस वक्त उन्होंने

0: सामाजिक कार्य किए, पैसे इकट्ठे किए और तत्कालीन मुख्यमंत्री के राहत कोष में उन्होंने जमा करवाया और इस तरह से समाज सेवा अपनी जारी रखी
1: जी।
0: इसके अलावा कुछ और काम उनके हैं जो कि उनके जननायक की छवि को उजागर करते हैं। जैसे उन्होंने शिल्पी संगठन बनाया था फिल्म आर्टिस्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि फिल्म आर्टिस्ट जब उम्र दराज हो जाते हैं, उनको जब काम मिलना कम हो जाता है, वैसी स्थिति में उनके पास आर्थिक स्रोत कम हो जाते हैं
1: जी।
0: वहां पर उन्होंने एक संगठन के माध्यम से उन सभी कलाकारों को, जरूरतमंद कलाकारों की मदद के लिए काम किया, पैसे इकट्ठे किए, उन सब तक पैसे पहुंचाते थे
1: जी।
0: इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट का आयोजन भी कराया था एक मदद के लिए, है ना, जिसमें वो खुद कैप्टन बने थे पश्चिम बंगाल से
1: जी।
0: और मुंबई से कैप्टन बने थे दिलीप कुमार साहब
1: जी।
0: इस तरह के कई सारे काम करते थे। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प है वाकया वो ये है कि वो मुरमुरे के बड़े शौकीन थे, मुरमुरे के बड़े शौकीन थे और पकौड़े जो होते हैं ना, खाने वाली चीजें, पकौड़े जो लोकेशन पर वो सबको वो मुरमुरे और पकौड़े खिलाते थे। और उनका जो मानना था ये कि जो छोटा आर्टिस्ट है या कोई बड़ा डायरेक्टर है उन सबको वो अपनी तरफ से ये खाने की चीजें वितरित करवाते थे, उनको देते थे। और उनके मन में एक ये भाव था कि कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं होता है
1: जी।
0: तो ये सारी चीजें ऐसी है, एक अभिनेता सिल्वर स्क्रीन के एक बड़े नायक होने के साथ साथ सिल्वर स्क्रीन के पीछे की जो उनकी एक छवि है
1: जी,
0: आम जनता से जुड़ाव का, सामाजिक कार्य का, उसने उनको एक जननायक की छवि प्रदान की
1: जी। और इंडियन नेशनल आर्मी के लिए भी वो फंड देते थे, आर्थिक मदद करते थे
0: इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो उन्होंने गुप्त दान बहुत किए थे, गुप्त कार्य बहुत करते थे
1: जी।
0: ऐसे काम जिनको लेकर के पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी नहीं है। अगर हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो पब्लिक में ये जाना बहुत जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े समाज सेवी है, बहुत बड़े सामाजिक नायक है, क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की छवि भी उन्होंने बनाई थी और गुप्त दान के जरिए जो आम लोगों तक उनकी सहायता पहुंचती थी
1: जी,
0: इससे भी उनकी एक जननायक की छवि बनी थी।
2: जो 1971 की जो वार थी उसमें उन्होंने सेना के लिए बहुत पैसा खर्च किया, उनके परिवार के लिए जो शहीद हो गए थे उनके लिए, उनके कार्यक्रम भी किए, उसके लिए अपनी जेब से भी बहुत दिया
1: जी।
2: तो ये बड़ी बात थी। दूसरा जो आनंद मठ का बता रहे थे राशि, उसके अंदर जो मेरी जानकारी है 5,000 रूपये उन्होंने उस समय दिए थे उसके लिए, तो बहुत बड़ी राशि थी
1: जी। जी प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी 1950 से 70 के दशक के दौरान जब समाज में बहुत बड़े बदलाव हो रहे थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये बात है, तब ऐसा कहा जाता है कि उत्तम कुमार की फिल्मों ने बंगाली अस्मिता और मध्यम वर्गीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने फिल्में भी वो की जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करती थी और इस तरह से भी एक सॉफ्ट स्किल के माध्यम से उन्होंने लोगों में एक तरह की क्रांति जगाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल आपकी सही बात है कि उन्होंने इस तरह की फिल्में करते रहे, उनकी चाहिए सामाजिक उद्देश्यों को लेकर हो, खाली देशभक्ति को लेकर ना हो, लेकिन समाज में जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आए और जो जिस तरह भारत में तरक्की शुरू की उसको लेकर उन्होंने बहुत सारी किस तरह की फिल्में बनाई और साथ ही एंटरटेनमेंट भी किया, क्योंकि एक बड़ा एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था। बंगाल तो बहुत ज्यादा प्रभावित था स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से जुड़ा हुआ था, उधर कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ इधर आ गए, तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि बहुत परिवार बिछड़ गए थे। तो इन्होंने मनोरंजन को भी बहुत ज्यादा दिया, जिस तरह राज कपूर ने 1951 में आवारा फिल्म बनाई तो रूस में इसलिए चली कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि लोग उदास थे, निराशा में जी रहे थे, तो इसलिए इन्होंने भी ऐसी फिल्में की जो लोगों को एंटरटेनमेंट करें, उनको उभारें, उनको नया संदेश दें, नया जीवन दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। तो बहुत बड़ा था उत्तम कुमार की कितनी ही बात करें, एक बात याद करते हैं 10 बात याद आ जाती है। अब ये बोल रहे तो मुझे कई बात याद आ जाती है बोलते बोलते, वैसे याद आ जाती है। एक ऐसा अभिनेता जो महानायक रहा, तो उसको आप देखिए वहां के लोगों ने, बंगाल ने बहुत वो किया, विदेशों में भी उनकी कुछ फिल्में चली, रूस में भी चली और जगह भी चली, नायक फिल्म भी बहुत जगह उसको अवार्ड मिले, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी गई और उसको फिल्म को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनको इस तरह का सम्मान नहीं मिल सका, वो भी इस बात के लिए परेशान से रहते थे कि मैं भी पूरे विश्व में छाऊं, बंगाली सत्यजीत रे के माध्यम से या अपनी, और सत्यजीत रे की फिल्में तो पूरे विश्व में जाती जाती थी, कोई फेस्टिवल ऐसा नहीं होता था जहां उनकी फिल्म नहीं जाती थी। कि उन्होंने तो शुरुआत की अपनी जब पहली फिल्म से, पाथेर पंचाली से ही, उसी से उन्होंने विश्व में नाम कमाना शुरू कर दिया था, तो अपनी पहली फिल्म से हो गई, तो इसलिए उनकी जो भी फिल्म बनती थी वहां जाती थी। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं हिंदी सिनेमा में जाऊं, उससे भी मेरा नाम हो, मेरी पहचान बने, कि अभिनेता की ख्वाहिश होती है ना, हम भी मान लो लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी पाठक सभी वर्ग में हों, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो सब जगह सुने जाएं, सब जगह देखे जाएं, तो अभिनेता की तो बहुत बड़ी चाहत होती है कि मैं इतना

0: काम कर रहा हूं, जब उसको एक जगह इतनी बड़ी मान्यता मिल जाती है वो चाहता है। आप ये देखिए उनको, हालांकि राज कपूर ने एक बार कहा कि आप मेरी फिल्म में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने मना कर दिया। राज कपूर ने सुचित्रा सेन से भी कहा, जो सबसे ज्यादा फिल्म की, लेकिन सुचित्रा सेन क्या थी, वो ऐसे व्यक्ति को पसंद करती थी जो बुद्धिमता वाला हो, बातचीत में जिसकी मजबूती हो, उसका कोई आकर्षण शरीर का या उसके अंदाज, वो उनको पसंद नहीं थे। राज कपूर उनको आमंत्रित करने गए, उनको घर पे मेरी फिल्म में काम कीजिए, जैसे वो बैठी उनके पैरों में जाकर बैठ के उनको फूल दिया, सुचित्रा सेन को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने भी राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन बाद में राज कपूर को जब लगा, जब उनकी संगम पिक्चर के लिए उन्होंने कहा था, और राज कपूर ने उत्तम कुमार को, जो राजेंद्र कुमार का रोल था, वो सबसे पहले उन्होंने उत्तम कुमार को ऑफर किया था, तो लेकिन उनको लगा कि पता नहीं मैं अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब 1964 में वो फिल्म रिलीज हुई, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म जिसकी शूटिंग विदेशों में पहली बार की, तो इतनी सुपरहिट हो गई और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की जोड़ी साथ में विजयंती माला एकदम हो गई, तब उनको लगा रही है तो मैंने शायद गलती करी, तो मुझे कोई फिल्म करनी चाहिए। उसी का नतीजा था कि उन्होंने 1967 में खुद प्रोड्यूसर बने, विजयंती माला को हीरोइन लिया। विजयंती माला जी से मेरी कितनी बार बात होती है, तो जब भी कहती है उस बात का जरूर जिक्र करती है कि वो फिल्म चली नहीं, लेकिन उत्तम कुमार ने बहुत ही दिल से बनाया था, बहुत पैसा लगाया उस समय के हिसाब से, और कलर फिल्म थी पहली वो, तो उन्होंने वो बनाया, तो तब वो फिल्म 1967 में आई छोटी सी मुलाकात, और वो इतनी मशहूर हो गई, विजयंती माला के साथ उनकी मतलब फिल्म चाहे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई और वो कर्ज में डूब गए, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस फिल्म को आज भी हम याद करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी।
1: तो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता उत्तम कुमार के बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं संजीव श्रीवास्तव, आप जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, लेखक हैं, और इस बार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक के तौर पर आप ही को प्रदान किया जा रहा है, स्वर्ण कमल पुरस्कार। संजीव जी शुरुआत में रह गया, लेकिन मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस उपलब्धि के लिए, आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे और बहुत सारी उपलब्धियां आपको प्राप्त हों।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम श्रोताओं को, और साथ में इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन करने के लिए जूरी के सदस्य को और सभी चाहने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं प्रदीप सरदाना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म समीक्षक हैं, और पिछले 50 वर्षों से हम एक सक्रिय मीडियाकर्मी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में आपको देखते रहे हैं। तो संजीव जी, अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी,
0: मुझे भी बधाई दीजिए 50 साल होने की।
1: जी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको।
0: एक साल से सेलिब्रेशन चल रहा है मेरा अर्धशताब्दी का।
1: जी, इस अर्धशताब्दी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।
2: नीलम जी, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि प्रदीप जी इतने बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं करीब 25 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
2: बिल्कुल आधे का फर्क है। आज उनके साथ मैं बैठकर वार्ता कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है
1: जी। तो प्रदीप जी, आपका ये जोश जो है दमखम यूं ही बना रहे, हम ये कामना करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हम आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे जी। तो संजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तम कुमार जी की बहुत सारी फिल्में, बांग्ला फिल्में जो हिट रही, उनका रीमेक बाद में बॉलीवुड में बना, यानी हिंदी फिल्मों के रूप में हमारे सामने आया, और जो भूमिकाएं उत्तम कुमार ने निभाई थी वो भूमिकाएं बाद में हिंदी फिल्मों में देवानंद साहब ने भी निभाई, फिर दिलीप कुमार साहब भी उसमें रहे और अपने समय के बहुत ही दिग्गज अभिनेता रहे। मेरा एक तो सवाल ये कि उनकी फिल्मों के रीमेक क्यों बने, दूसरा ये कि क्या वजह थी कि वो भूमिकाएं खुद उत्तम कुमार ने नहीं निभाई बल्कि हमारे हिंदी फिल्म कलाकार जो थे बाद में उन्होंने निभाई।
2: इसकी वजह तो नहीं कही जा सकती कि उस समय के डायरेक्टर, उस समय के प्रोड्यूसर और हिंदी में जिस अभिनेता की जो छवि बन चुकी है
1: जी,
2: वो भी वजह होती है, साथ में कलाकार के पास क्या समय है, वो किस तरह के काम में और इन्वॉल्व है, दूसरी फिल्मों में इन्वॉल्व है, टाइमिंग, ये सब भी बड़े फैक्टर होते हैं
1: जी।
2: लेकिन कुछ बड़ी फिल्में हैं जो कि बांग्ला में पहले बनी और फिर उनका हिंदी में रीमेक हुआ, और जो हिंदी में रीमेक हुआ वे सारी फिल्में
1: जी
2: बहुत ही पसंद की गई, बहुत ही चर्चित वो फिल्में हैं। जैसे कि अगर मैं एक जिक्र करूं, साहब बीबी और गुलाम
1: जी,
2: ये बांग्ला में बनी जिसमें खुद उत्तम कुमार जी थे, लेकिन जब उसका हिंदी रीमेक बना
1: जी,
2: उसमें बांग्ला में भी वो भूतनाथ बने थे, और जब हिंदी रीमेक हुआ तो उसमें गुरुदत्त साहब ने उसमें भूतनाथ का रोल किया
1: जी।
2: इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं, जैसे कि बांग्ला में सवार ओपोरे नाम की एक फिल्म बनी 1955 में। इसमें क्या है कि एक बेसिकली ये क्राइम थ्रिलर था जिसमें एक अपने बेगुनाह पिता को बचाने के लिए बेटा प्रयास करता है, और तो ये कहानी थी, और ये कहानी हिंदी में बनी कालापानी नाम से जिसमें देवानंद साहब थे। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं जैसे कि अग्नि परीक्षा, जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं, अग्नि परीक्षा का हिंदी रीमेक बना था छोटी सी मुलाकात, जिसमें वो खुद ही थे
1: जी।
2: लेकिन इसके अलावा दूसरी

0: फिल्म है जैसे लाल पत्थर बनी थी, लाल पत्थर भी बांग्ला
1: वैसे
0: में बनी।
1: आशापूर देवी के उस पर थी
0: हाँ
1: जी,
0: उपन्यास पे थी।
1: उपन्यास
0: जी
1: पर
0: जी जी
1: आधारित
0: बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल। तो लाल पत्थर बनी थी, तो लाल पत्थर जब हिंदी में बनी तो उसमें राजकुमार एक्टर थे, और लाल पत्थर प्रसिद्ध फिल्म हुई अपने आप में, बहुत ही
1: बहुत अच्छी
0: क्लासिक फिल्म है,
1: जी।
0: बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, बहुत पसंद की गई थी। बांग्ला में एक फिल्म बनी थी भ्रांति विलास, वो हास्य बोध की फिल्म थी,
1: जी
0: उसमें वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर होते हैं, और जब हिंदी रीमेक उसका जब बना,
1: तो चुपके चुपके
0: ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने बनाई वो
1: जी।
0: फिल्म जिसका नाम चुपके चुपके है, और
1: जी
0: धर्मेंद्र उसमें
1: परिमल त्रिपाठी का
0: परिमल
1: किरदार जो
0: त्रिपाठी का रोल में
1: है
0: आते हैं,
1: वो
0: और
1: सबके
0: धर्मेंद्र की वो
1: नजदीक।
0: बहुत ही क्लासिक फिल्म है। धर्मेंद्र की मुझे लगता है मेरी चॉइस में अगर अगर हम उनकी हम पांच पसंदीदा फिल्में अगर एक साथ रखते हैं तो उसमें
1: जी।
0: चुपके चुपके को भी हम शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म आई थी 1975 में, हम इसे ओ सखा, इसका जब हिंदी रीमेक बना वो बना बेमिसाल नाम से,
1: जी
0: उसमें डॉक्टर के दोस्त अमिताभ बच्चन उसमें बनते हैं, विनोद मेहरा उस फिल्म में डॉक्टर बने हैं।
1: जी
0: तो अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो रोल बांग्ला फिल्म में उत्तम
1: उत्तम
0: कुमार
1: कुमार
0: जी ने निभाया था।
1: जी। और अंगूर तो बहुत
0: अंगूर
1: चर्चित फिल्म
0: गुलजार
1: थी उसमें
0: साहब की अंगूर,
1: जी।
0: वो भी एक तरह से बांग्ला की ही रीमेक थी। लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर हम ये देखते
1: वो
0: हैं
1: शेक्सपियर थे उस पे थी
0: जी
1: जी,
0: जी जी
1: कॉमेडी ऑफ
0: कॉमेडी ऑफ
1: एरर्स
0: एरर्स
1: जी
0: पे,
1: जी
0: लेकिन इसको बंगला में बहुत चली वो। इसके अलावा देखिए अमर प्रेम, अमर प्रेम को लेकर तो बहुत सारी कहानियां हैं।
1: जी
0: राजेश खन्ना उसमें आते हैं, और इसमें राजेश खन्ना को तो कहा गया बकायदा, शक्ति सावंत साहब ने बकायदा कहा कि आप जब बांग्ला में जो बनी है उसमें जो उत्तम कुमार जी ने जो अभिनय किया है उसको आप देखिए और उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए।
1: वैसे धोती कुर्ता बांधा उन्होंने
0: धोती
1: जैसे उसमें बांधा
0: जी, वैसे ही धोती कुर्ता पहना, और आयुष खन्ना अपने लिए बहुत ही गौरवान्वित उन्होंने एक
1: जी।
0: भाव व्यक्त किया कि वाकई मुझे उत्तम कुमार जी की पोशाक को धारण करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका को निभाने का मौका मिला है। तो राजेश खन्ना जैसे स्टार समझिए उस वक्त, जिस
1: जी।
0: समय अमर प्रेम फिल्म आती है उस समय राजेश खन्ना का क्या सितारा बुलंद था।
1: जी।
2: और इसका ये बता दो, इसका जो गाना है ना चिंगारी कोई भड़के
0: जी,
2: वो भी हुगली में वही पिक्चराइज किया गया, उसी जगह जहाँ वो किया गया। और शिवया टैगोर बता रही थी कि वहाँ इतना पानी सड़ चुका था कि बड़ी बदबू आती थी, और हमको ऐसा लगता फिल्म में ऐसा दिखाना बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है, कहते हमने उसमें भी काम किया, 5 दिन हमने उस गाने को शूट किया वहाँ पर।
1: ये उत्तम कुमार की छवि का प्रभाव था उस समय।
0: तो कहने का आशय यह है कि उतने बड़े स्टार जो उस वक्त के इतने बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी उत्तम कुमार की निभाई हुई भूमिका को हिंदी में निभाया और बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। राजेश खन्ना तो कहते थे कि अगर मैं 50% भी उनके भावों को ठीक से व्यक्त कर पाया तो शायद मेरी वो बहुत बड़ी सफलता होगी।
1: प्रदीप जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब कहते हैं उत्तम कुमार तो एक छवि हमारे सामने आती है, एक तो ये छवि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में संजीव कुमार से बहुत मिलती जुलती है, तो क्या इसका कुछ नकारात्मक पहलू रहा कि उत्तम कुमार को अपनी एक इमेज बनाने में समय लगा? और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये नाम जो उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम के पीछे की कहानी क्या है?
2: देखिए पीछे कहानी यह है कि इनके पिता ने इनका नाम अरुण कुमार रखा
1: जी,
2: तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय, अरुण कुमार चटर्जी जैसे आप जानते हैं दोनों बोले जाते हैं, तो अरुण कुमार चट्टोपाध्याय इनका नाम रहा। इनके दो भाई और रहे, एक वरुण कुमार और एक तरुण कुमार। तरुण कुमार तो फिल्मों में रहे, उन्होंने तो 500 से ज्यादा फिल्में की, इनके छोटे भाई थे 5 साल छोटे थे इनसे
1: जी,
2: और उन्होंने वरुण ने कोई फिल्में नहीं की। और जो इसकी बात है तो इन्होंने जब शुरुआत की, सबसे पहले जो की फिल्म थी 1948 में दृष्टिदान
1: जी,
2: दृष्टिदान, तो दृष्टिदान के अंदर ये अरुण कुमार के नाम से
1: जी,
2: तो वो फिल्म नहीं चली। तो इनके साथ ऐसी हुआ, जैसे 5 साल अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया ना, सारी फिल्में फ्लॉप होती रही, उसके बाद जंजीर से चले वो, 69 में उनकी पहली फिल्म आई सात हिंदुस्तानी, 1973 में जंजीर आई, उससे चले। इनका भी ठीक ऐसे ही रहा कि 5 साल उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने नाम नहीं बदले, इन्होंने नाम बदले। उसके बाद इन्होंने अपना नाम अनूप कुमार के नाम से फिल्में की, फिर इन्होंने उत्तम चटर्जी के नाम से फिल्में की, उसके बाद जाकर इनका जो है ये नाम आया उत्तम कुमार, उसके बाद इनकी गाड़ी चल निकली। उसके बाद जो इनकी जो बसु परिवार फिल्म आई थी वो सबसे ज्यादा चली, बसु परिवार। उसके बाद तो बस फिर अग्नि परीक्षा और ये सब सारी फिल्में ऐसे चलती रही, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर तो पूरा जो भी समय था वो लगातार उत्तम कुमार का था। आप देखिए इतनी फिल्में करना और उसमें से अधिकतर फिल्में जुबली होना और इतनी सफलता मिलना, इतनी लोकप्रियता मिलना, लगातार जो है सब करना, ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह महानायक के रूप में मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, मैं उसको बॉलीवुड कहना नहीं चाहता, मैं उसको हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग ही कहूंगा, बॉलीवुड की निकल पे बॉलीवुड मुझे नहीं जमता, तो उसके अंदर जिस तरह दिलीप कुमार को महानायक कहते रहे, या अब जाके अमिताभ बच्चन को महानायक कहते हैं, उसी तरह उत्तम कुमार अकेले महानायक रहे वहां पर, अभी भी वही महानायक है, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। चाहे कई लोगों ने हिंदी के अभिनेता भी वहां गए, उन्होंने भी फिल्में की, विश्वजीत भी करते रहे, वहां भी करते रहे, मिथुन चक्रवर्ती भी,

0: जुड़े रहे, तो दोनों सिनेमा से और भी बहुत सारे जुड़े रहे, विश्वजीत के पुत्र भी जुड़े रहे,
1: जी
0: इनके पोते भी जो हैं उत्तम कुमार के वो भी अब कर रहे हैं फिल्म जो है, कि बाकी और एक बेटा था उनकी डेथ हो गई बाद में, फिर बाद में उसने किया तो वो भी इस तरह सिनेमा कर रहा है। इनका असल में परिवार जो था वो इनके जो फादर थे हमारे सिनेमा था इंदिरा सिनेमा,
1: जी
0: उसके अंदर प्रोजेक्टर चलाते थे, तो उसी को देखकर इनको फिल्में करने का मन किया। और लेकिन इनका बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था तो वो थिएटर भी साथ साथ करते रहते थे, तो उससे क्योंकि सिनेमा तो कर नहीं सकते थे, आप सिनेमा देखते ये नहीं कि आप सिनेमा में आपको काम

0: इनकी चलनी शुरू हुई और फिर देखिए वो तो इतिहास बन गया उत्तम कुमार आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि इतने साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तम कुमार का जिक्र करके उनको दोबारा से लाइव कर दिया जो उनको भूल भी रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है उनको जब पुरानी किसी सरकार ने पद्म पुरस्कार नहीं दिए चाहे दादा साहब फाल्के नहीं दिया लेकिन ये याद करके सबसे बड़ा पुरस्कार है। आज देखिए सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं उत्तम कुमार। उत्तम कुमार कौन है नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती मेरे परिवार में उत्तम कुमार कौन है क्योंकि उत्तम कुमार एक तो भगवान में ज्यादा है यहाँ जैसे बताया कि उनकी फिल्में आई 15 फिल्में थी उन्होंने और जैसे बताया
1: और संजीव कुमार जी से चेहरा मिलता था
0: संजीव कुमार देखिए जो आदमी फिल्म है वो भी कमलेश्वर ने लिखी थी और कमलेश्वर पहले चाहते थे कि इसके अंदर इन्हीं को ले उत्तम कुमार को। अब आपने बात की मुझे याद आ गया तो कमलेश्वर जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे बहुत लंबे सालों तक तो उन्होंने ये कहा कि हम उनको लेना चाहते हैं लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे।
1: किस फिल्म में?
0: आंधी फिल्म में।
1: आंधी में
0: 1973 में जब ये फिल्म हुई तो उत्तम संजीव कुमार का जो रोल था वो चाहते थे वही करें।
1: सुचित्रा सेन
0: इसके अंदर थी और सुचित्रा सेन उनकी फेवरेट हीरोइन थी दोनों बहुत अच्छी उनकी जोड़ी थी लेकिन उस समय उन्होंने वो फिल्म नहीं की इस तरह तो लेकिन आप देखिए वो आंधी फिल्म है वो भी इतनी चली संजीव कुमार की। संजीव कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी उसके अंदर मिला और शिल्पा टैगोर भी उसको बहुत याद करती हैं क्योंकि शिल्पा टैगोर के साथ भी इनकी अच्छी जोड़ी थी और सुचित्रा सेन के साथ भी इनकी अच्छी रही तो उनकी दो अभिनेत्रियां तो उनकी बहुत ज्यादा रही जो इनकी इस तरह बाकी सुप्रिया देवी जो उनके साथ बाद में जीवन में आई पहले उन्होंने शादी की गौरी देवी से तो लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई 1963 में इनका अलगाव हो गया था दोनों का फिर ये इनके साथ रहने लगे उनके साथ पूरा तलाक नहीं हुआ था लेकिन वो अंत तक 1980 तक इनके साथ रही। तो इनका जो परिवार है वो एक अपना एक अलग तरह का था वैसे दिल खोल परिवार था मतलब वो इतना संपन्न भी नहीं था लेकिन ऐसा भी नहीं था संयुक्त परिवार था तो एक ने कमाया दूसरे ने ज्यादा कमाया तीसरे ने कम कमाया तो इस तरह आता था कि वो तो आनंद में रहते थे तो समाज सेवा में भी सक्रिय रहते थे सिनेमा में रंगमंच में बहुत काम किया। रंगमंच का काम तो सामने आ नहीं पाता जो पुराने लोगों ने किया हम पृथ्वीराज कपूर को याद करते हैं कोलकाता में उन्होंने इतना किया शशि कपूर ने भी जाकर किया
1: और उस समय रंगमंच जन जागरण का कार्य करता था।
0: जेनिफर जो उनकी पत्नी रही वो भी उनको शशि कपूर को वहीं मिली क्योंकि वो थिएटर करती थी उन अपने फादर के साथ और शशि कपूर अपने फादर पृथ्वीराज कपूर के साथ करती थी तो थिएटर का जो देखिए कोलकाता के अंदर सबसे बड़ी बात है रंगमंच सिनेमा और कला का जो जुनून मैंने वहां देखा है। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1985 से कवर कर रहा हूँ मैं जब भी वहां जाता था तो लोगों के पास कपड़े फटे हुए हों चप्पल टूटी हुई हो लेकिन फिल्म देखने के लिए बड़े शौक से आते थे टिकट खरीद कर क्योंकि वो जो रंगमंच और ये सब जो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है रंगमंच के अंदर उत्तम कुमार के योगदान को भी नहीं बुलाया तभी जो है आप ये देखिए यहाँ के लोग हम वहां जाके सिनेमा करते थे न्यू थिएटर वहां रहा जिसने फिल्में बनाई बड़े बड़े एक्टर वहीं जाके काम करते थे तो इसलिए कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है खासतौर कोलकाता तो खासतौर से कहेंगे वो तो बिल्कुल कला संस्कृति और सिनेमा की
1: राजधानी कहा जाता था। जी बिल्कुल
2: एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें और प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छी बात शुरुआत में कही थी कि उनकी उपेक्षा बहुत हुई वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया मन की बात में तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि उत्तम कुमार जी कौन थे
1: जी।
2: ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मन की बात का इस बारे में हमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो मैं चाहता हूँ उसे मेंशन करूँ वो ये कि मन की बात में इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी ने फिल्म कलाकारों को याद किया है और खास तौर पर अगर याद करें साल 2024 के अंत में जब राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी
1: जी।
2: और मोहम्मद रफी साहब की जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी तपन सिन्हा की इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने काबुलीवाला और सगीना महतो जैसी फिल्म बनाई
1: जी।
2: हिंदी और बांग्ला में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाने वाली थी। तेलुगु फिल्म के एक बहुत बड़े कलाकार थे नागेश्वर राव
1: जी
2: उनकी जन्म शताब्दी उन सबको उन्होंने
0: भूपेन हजारिका को
2: मन की बात में याद किया बहुत शिद्दत से याद किया है और सिनेमा को लेकर के उनका एक दृष्टिकोण है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब हम करते हैं तो सिनेमा हमारा जो है उसमें एक बहुत बड़ा झंडा की तरह दिखाई देता है कि सिनेमा कैसे पूरे भारत को जोड़ता है और दुनिया में हमारी भाषा को पहुंचाता है इस बात को उन्होंने मेंशन किया है। और खासतौर पर राज कपूर के लिए उन्होंने ये कहा कि जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की उसको उन्होंने दुनिया के मंच पर पहुंचाया।
1: बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारतीय फिल्मों का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसकी भी एक बड़ी भूमिका है और साथ ही जो हमारी कला और संस्कृति का पूरी दुनिया में परचम लहराता है।
0: राज कपूर तो ऐसे हैं उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार है जिसको राज कपूर परिवार कपूर परिवार जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सब इकट्ठे सदस्यों को अपने घर पर बुलाया उनसे चर्चा की उन्होंने वो ही सॉफ्ट पावर की चर्चा
1: बिल्कुल कई पीढ़ियों का दृष्टिकोण उसमें एक साथ दिखाई देता है।
0: राज कपूर भी बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जिस तरह सत्यजीत रे और यहाँ राज कपूर दो हमारे ऐसे हैं भारतीय सिनेमा के जो फिल्मकार बड़े जिनको बुलाया जाता दोनों ने अभी सत्यजीत रे उस तरह के राज कपूर ने तो खैर अभिनय भी किया दोनों ने उनका इस तरह का वो रहा तो

0: वो जो उनको आप कभी भुला ही नहीं सकते, उनकी अब जन्म शताब्दी अब देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 साल से हम अलग अलग लोगों की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। उत्तम कुमार की वहाँ संगीतकार के रूप में हमने अभी रवि और ओपी नैयर है उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। अभी आगे भी हम राजकुमार की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, प्रेमनाथ की जन्म शताब्दी मनाने वाले हैं, उससे पहले भी हम लगातार शैलेंद्र, गुरुदत्त, देवानंद, राज कपूर, देवानंद, इन सबकी हम जो त्रिमूर्ति रही, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की जन्म शताब्दी मनी मनाना। तो जन्म शताब्दी के बहाने इस तरह याद करना और उल्टा खासतौर से ऐसे लोगों को याद करना जिनका बहुत अच्छा उनका अतीत, बहुत इतना काम किया उन्होंने, अब जाकर उनको लोग बुला रहे हैं, तो ये जन्म शताब्दी के बहाने और प्रधानमंत्री के कहने से तो इतना आगे हो गया कि हम सब इनको, हमने इसलिए इनको 3 तारीख को बहुत याद किया
1: जी। और नई पीढ़ी भी इनके बारे में अब जान रही है और विभिन्न माध्यम है हमारे पास जानने के, बहुत चर्चित नाम आपने लिए। मैं यहाँ संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम उत्तम कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि किस तरह से वो चाहे अपने नाटकों का मंचन हो या फिर वो अलग अलग इवेंट करते हो और उससे जो कलेक्शन है, फंड रेजिंग कार्यक्रम है, उनसे वो जन साधारण के लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए दान करते थे। और जैसे बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की बात कही तो वो हमेशा सजग रहते थे और उसमें अपनी ओर से योगदान करते थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, युवा पीढ़ी खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनसे बहुत प्रेरित होती है और उनको बहुत फॉलो भी करती है, उनके जैसा अंदाज अपनाती है, उनके जैसा लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं और कुछ कुछ चीजों की नकल भी करते हैं। ऐसे में जब ये चर्चित चेहरे जो हैं, प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जब आगे बढ़कर और अपना जो कार्य क्षेत्र है उससे अलग हटकर कुछ करती है और समाज के प्रति योगदान करते हैं, ये गंभीरता का स्तर बनाए रखते हैं और लोगों से जुड़ना चाहते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे कैसे हमारी युवा पीढ़ी को एक दिशा मिलती है?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मुझे लगता है युवा पीढ़ी को बहुत अच्छी दिशा मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उन्हें दिशा हासिल करनी चाहिए ऐसे कार्यों को देख करके। उत्तम कुमार जी ने जिस तरह से काम किया, सामाजिक काम किए, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कलाकार हैं, सुनील दत्त साहब ने कितना सामाजिक काम किया था ये हम लोग जानते हैं, उन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा मुझे लगता है कि जो विरासत उन्होंने खड़ी की उस विरासत की कड़ी किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है
1: जी।
2: वह विरासत की कड़ी चलती रहती है, एकदम से लुप्तप्राय नहीं होती। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बड़ी सेलिब्रिटी को देखा कोविड के दौर में, सोनू सूद को, सामाजिक काम करते हुए
1: जी।
2: आज के दौर के हमारे एक बड़े गायक हैं अरिजीत सिंह, वो भी सामाजिक सेवा, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: इस तरह की कई सारी पर्सनालिटीज हैं जिनको देख करके युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होती है। हाँ, यह ठीक है कि लाखों की संख्या में अगर फैंस होते हैं तो शायद सामाजिक कार्यों से इंस्पायर्ड होने वालों की संख्या शायद 10-20-25 ही होती है जो कि उस काम को आगे बढ़ाती है
1: जी।
2: लेकिन वो कड़ी बनी रहती है। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है कि आज की युवा पीढ़ी बहुत जल्दीबाजी में है। मैं भी कभी युवा था, जो आज के जेन ज़ी युवा है उसी तरह से मैं भी कभी युवा था। लेकिन जो आज स्पीड दिखाई देती है कि एक बार में, एक ही झटके में, एक ही कम समय में बहुत सारी चीजें हासिल हो जाए, ये जो जल्दबाजी है उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है जरूर। लेकिन उसी भीड़ में एक दो लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो कि सामाजिक काम कर रहे हैं, तो उससे आशा की किरण चमकती है कि एकदम से सामाजिक कार्यों की विरासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, इसलिए वहां पर हम आशान्वित होते हैं
1: जी।
2: ये काम चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी
1: जी। तो यानी हमारी जो चर्चित हस्तियां हैं लगातार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होते हैं लोग।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुनते सुनते अगर हमारे किसी युवा श्रोता के मन में ये बात आए कि उन्हें भी फिल्म क्रिटिक बनना है या फिल्म लेखन से जुड़ना है या वो पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो क्योंकि आप दोनों दिग्गज इस समय यहाँ हैं तो मैं आपसे चलते चलते ये जरूर चाहूंगी कि आप हमारे युवा साथियों के लिए कोई एडवाइस यहाँ जरूर दें, वो कैसे आगे बढ़ें।
0: देखिए, आज तो एडवाइस देने की जरूरत ही नहीं है
1: जी।
0: सोशल मीडिया जब से आया है हर कोई क्रिटिक बन गया है
1: जी।
0: यूट्यूब पे देखिए, कोई फिल्म नहीं आती वो हमसे पहले वो उसका रिव्यू कर देते हैं। कई लोग तो अभी उसका ट्रेलर एक्चुअल में लॉन्च ही नहीं होता उससे पहले उसका रिव्यू कर देते हैं।
1: लेकिन बहुत
0: हमने
1: क्या
0: किया, देखिए हमने जिस दौर में शुरू किया वो ऐसा दौर था 1974 में
1: जी।
0: कि जब ये बहुत आप किसी से कोई, आज तो आप वो ट्वीट कर देते हैं आप उनके बारे में जान लें, तब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था
1: जी।
0: हम तो अमिताभ बच्चन से एक बार मिले तो हमें पता है कि हम अमिताभ बच्चन से घर पे जाके मिले दिल्ली में 1976 में उनके बर्थडे पे गए, या उनके पिताजी डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जो मेरे गुरु रहे हम तब भी उनसे मिलते थे इतने सालों से। तो हमें जो अमिताभ बच्चन बात बताते थे हमें पता ये बात कहीं जाने वाली नहीं है क्योंकि मेरे बीच में बात हुई है। हम उसको जरूर कल

0: दे, परसों दे, तरसों दे, कभी भी दे देते थे। आज तो स्थिति ये है कि आप बात करके निकलिए, कभी कभी दीजिए, लेकिन पता लगे वो एकदम आउट हो जाएगी। तो अब जो है हमने, लेकिन हम देखिए उस समय जब मैं वी शांताराम से मिलता था, तारचरण बड़जात्या से मिलता था, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर, उस समय के जितने दिग्गज फिल्मकार थे पुराने पुराने, तो इनसे बात करने का अलग आनंद आता था और अलग सुख मिलता था। हमसे वो खाली हम उनसे सलाह लेते थे। तारचरण बड़जात्या जी ने जब फिल्म मैंने प्यार किया बनाई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे उसका पोस्टर दिखाया, उसकी स्टूडियो में मुझे उसके रशेज दिखाए कि जरा बताइए कैसे हैं। उसके गाने दिल्ली में मुझे अपनी एम्बेसडर कार में सुनाए, जनपद पे गाड़ी रोककर जब हमने रिकॉर्डिंग कर आप गाने सुनी है। तो उस समय फिल्म समीक्षक की इतनी अहम भूमिका होती थी कि उसे सलाह ली जाती थी कि आप जानते हैं, सिनेमा देखते हैं, लोगों की नफी पहचानते हैं, तो आप बताइए क्या है। हम आपके कौन जब लगी पहली बार तो उसमें जो हमारे और क्रिटिक्स से बड़े क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं नहीं क्या फिल्म चित्रा बनाया, चलेगी नहीं, यही नहीं। तो जो उसके यहाँ दिल्ली के जो महावीर बड़जात्या थे वो उसके बाद भाग गए कि मेरे को पकड़ लेंगे, क्या फिल्म बनाई है ये। तो मेरे को फोन आया, मैं आप चिंता मत कीजिए, ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को देख रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे, मैं तो कर ही रहा था, मैं आसपास के लोगों को भी देखता हूँ, तो उससे अंदाजा लग सकता है। तो फिल्म क्रिटिक बनी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आलोचना कीजिए। आजकल रास्ता सबके पास यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से आ गया है, उससे भी कर सकते हैं, अखबार में भी और रेडियो में भी और टीवी में भी बहुत रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन उसको गंभीरता से लीजिए, जल्दबाजी अभी भी मत कीजिए। बेशक आप करने ये नहीं कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसको देखकर मैं बोल दूं, आप अपने दिमाग से बोलिए। हम आपके कौन के लिए सब लोग बोल रहे थे, मैं भी बोल देता तो मैं उसी हवा में बह जाता, लेकिन नहीं, तो इसलिए मेरी उनकी नजर में मेरा सम्मान और भी बढ़ गया, इसने कहा था ऐसे होगा, पोस्टर दिखाया कि ये होगा। तो ये सब चीज अगर आप करेंगे, गंभीरता से करेंगे, आप इसको ये ना सोचे हवाई हो जाए एकदम सब कुछ और हम ये बन जाए, पॉपुलर हो जाए, बहुत सारे पैसे कमा लें। एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर आपको लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, इसे आज भी हम बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी बातों पे लोग ट्रस्ट करें, तो अच्छा लगता है कि आज भी हमारी बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जैसे प्रदीप सदाना ने लिखा है या कहा है तो वो सच होगा। तो ये चीज आज की फिल्म जो बनना चाहते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी विश्वसनीयता बनाए, हवा हवाई बातें ऐसे ना करें, कोई भी अपना जो भी लिखे हैं, जो भी बोले हैं, जो भी करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से करें, आपको भी जो जैसी फिल्म लग रही है उस ईमानदारी से करें और बहुत अच्छे से करें, ये सबसे मैं चाहूंगा। ईमानदारी कर्मठता से करें, परिश्रम से करें, दिमाग लगाएं और फिल्मों के साथ अच्छी तुलना करें, ये नहीं कि आपने लिख दिया तो अगर वो करेंगे तो वो भी उनकी अच्छी फिल्म समीक्षक के रूप में अच्छी पहचान होगी।
1: यानी फिल्म अध्ययन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, जिम्मेदारी है, और आपकी जो लेखनी है या आपके जो शब्द हैं उनमें गंभीरता भी बनी रहे।
0: बातों पे लोग अपना देखने जाते हैं।
1: जी,
0: मैंने सबसे पहले टीवी के अंदर जो फिल्म आती थी संडे को, मैं सबसे पहले नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका रिव्यू करना शुरू किया, आज की टीवी फिल्म और टाइम्स ऑफ इंडिया में टू डेज टेली फिल्म, तो उसमें बताता शाम को, जो क्योंकि एक ही मनोरंजन का साधन होता था, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की कि लोग शाम को फिल्म देखें या ना देखें, तो वो इतना पॉपुलर हुआ लोग कॉलम, तो लोग कहते थे कि उसको देख के प्रोग्राम बनाते हैं कि जो आपने लिखा है आज ये फिल्म देखें या बाजार में परिवार के साथ घूमने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं। तो वो जो हमने दौर देखा है, हम उसको आज तक उनकी जो दर्शकों की भावना थी तो उसको मैं सर झुकाता हूँ हमेशा, इतना सम्मान दिया, तो आज भी मैं उसी लकीर पर चल रहा हूँ।
1: जी, यानी अपने काम के लिए ईमानदार भी रहना है और जो सामाजिक दायित्व है उसे भी समझना है, और ये समझ बनी रही है, इसीलिए फिल्म से जुड़े हुए लेखन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है। और पुरस्कार विजेता जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, संजीव जी, चलते चलते एक तो आपकी पसंद का गाना और हमारे श्रोताओं के लिए आपकी कोई सलाह।
2: श्रोताओं के लिए सलाह किस मायने में, फिल्म समीक्षा के बारे में?
1: जी,
2: अभी प्रदीप जी ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दे दिया इस बारे में कि फिल्म समीक्षक जो भी नए आ रहे हैं और फिल्में देख कर कुछ लिख रहे हैं तो उनके लिए उसमें बहुत कुछ टिप्स है। लेकिन एक दो बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि जब फिल्म आप देखते हैं, कोई भी नया युवा अगर देख रहा है, मैं भी अपने आप को युवा ही मानता हूँ, है ना, तो पर्दे पे दिखाई जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जो भी चीजें, वो केवल खेल तमाशा नहीं है। सिनेमा के भीतर सारे विषय हैं, राजनीति भी है, इतिहास भी है, संस्कृति है, तमाम कलाओं का संगम है, पूरा समाज है, पूरा परिवार है, युवा है, सब कुछ है, महिला है, महिला मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, सब कुछ है। आप उसको केवल एक मत समझिए कि केवल खेल तमाशा देख रहे हैं और गाने देख रहे हैं, केवल उस दृष्टि से सिनेमा को कभी मत देखिए। हाँ, उस नजरिए की फिल्म में कुछ आती है वह एक अलग मसला है। आज तो सिनेमा पर देखिए पीएचडी हो रही है, विश्वविद्यालयों में फैकल्टीज हैं, पढ़ाई हो रही है, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल रहा है कई सालों से। तो ये इसलिए मिल रहा है और ये इसलिए पीएचडी मिल रही है क्योंकि सिनेमा को एक गंभीर विषय माना गया है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है सिनेमा। तो फिल्म अगर हम देखते हैं, किसी फिल्म को हम देखते हैं तो उसके बारे में हम क्या लिखें? सबसे पहली बात तो यह है कि फिल्म को समझना, फिल्म को हम समझ

0: कितना पाए हैं। अगर फिल्म हमें पसंद आई तो क्या हम ये लिख दें कि मुझे पसंद नहीं आई? क्या यह समीक्षा है? अगर हमें पसंद आ गई तो हम क्या ये लिख दें कि हमें पसंद आ गई? यह क्या यह समीक्षा है? फिल्म समीक्षा एक एजुकेशनल पार्ट है
1: जी।
0: फिल्म समीक्षा जो है एक एजुकेशनल पार्ट है। जैसा कि प्रदीप सर ने अभी बताया था कि उनकी टिप्पणी पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड होते थे कि फिल्म देखने जाते थे। पहली सूचना आप देते हैं, फिल्म की गुणवत्ता के बारे में आप उसमें बताते हैं, हाँ ठीक है फिल्म में खामियां हैं, अभिनय खराब है, कहानी खराब है, उसका भी जिक्र करिए, लेकिन आप जजमेंटल मत होइए ये फिल्म कैसी है। दर्शकों के लिए, दर्शकों को पहले आप बताइए उस फिल्म में क्या है, और खामियां है तो बताइए, फिल्म के संदर्भ में बात करिए, वो कहानी के संदर्भ में है। ये नहीं कि अगर लव स्टोरी है तो उसकी तुलना हम वॉर मूवी से कर दें, और वॉर मूवी है तो हम लव स्टोरी की अपेक्षा उसमें डालें
1: जी।
0: ऐसा नहीं होता, ऐसी समीक्षा कभी भी मानक नहीं मानी जाती
1: जी। तो सही और सटीक शब्दों में दोनों पक्ष जो है वो सामने रखे जाए, उसे फिल्म समीक्षा हम कहेंगे कि दर्शकों के नजरिए से भी आपने लिखा है और साथ ही जो फिल्म निर्माता है उनके नजरिए से भी जी। और अब चलते चलते आपकी पसंद का एक और गीत,
0: आनंद आश्रम का एक गाना है
1: जी,
0: सारा प्यार तुम्हारा बांध लिया है आंचल में
1: जी।
0: ये बहुत ही खूबसूरत गाना है
1: जी,
0: और मुझे लगता है कि चलते चलते आप इस गाने को अगर सुनाएं तो मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा और जो हमारे तमाम श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत ही आनंद आएगा
1: जी। ठीक है, तो हम सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: गाने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे हमारे ऐसे दो विशेषज्ञ जिनके माध्यम से हमने उत्तम कुमार जो अभिनेता थे उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को जाना, हमने जो समसामयिकता रही उनके अभिनय की उस दौर की उसे पहचाना, और फिल्म लेखन की गंभीरता क्या है, वो कैसे समाज पर अपना असर डालता है, किस तरह से करियर के साथ साथ ये एक जिम्मेदारी भी है, अपने दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये समझा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहे जाने माने फिल्म क्रिटिक संजीव श्रीवास्तव, जो कि एक लेखक भी हैं और स्वर्ण कमल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में आपको प्रदान किया जा रहा है इस बार का, और साथ ही प्रदीप सरदाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 50 वर्षों से आप अलग अलग शैलियों में अलग अलग माध्यमों में लगातार सक्रिय रहे हैं, आप स्तंभकार रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखते रहे हैं, विभिन्न चैनल्स में हम आपको देखते हैं पैनलिस्ट के तौर पर, समीक्षक के तौर पर, जाने माने फिल्म समीक्षक भी आप हैं। और दोनों का संदेश यही कि फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है, तो जो सिनेमा के पात्र हैं वो भी हम में से ही निकले हुए हैं, और उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो अभिनय हम पर्दे पर देख रहे हैं उसके इतर जाकर हम उस व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करें जो उस पात्र को जीवंत कर रहा है पर्दे पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में हमने आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की अभिनेता उत्तम कुमार को। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से, और साथ ही हमारे दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय

0: अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय लालिमा अनेजा डैंग।
2: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం. ఇప్పుడు విందాం కర్ణాటక శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఏ కన్యాకుమారి గారి వయలిన్ వాద్యం ప్రసారమవుతుంది. ముందుగా గోవిందా నిన్నే, సమ్మోహన రాగం, ఆదితాళం.

0: भारतेन प्रोक्तं यत् जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत्य समस्त क्षेत्रस्य प्रदर्शनं केवलम् आधिकारिक मानचित्रानुगुणम् एव स्वीकार्यम्। मध्यप्रदेशस्य सागर मण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन 10 जनाः मृत्युमुपगताः, 35 जनाः चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः, कतिपय संदिग्धाः आरक्षिदलेन गृहीताः। अपि च चीनदेशस्य शेन्झेन नगरे आयोजितायां बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां चाइना मास्टर्स पुरुष युगल प्रतियोगितायाः चषकं भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन विजितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गोवा राज्ये वार्ताहर सम्मेलने 39,000 वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं रूपरेखां प्राकटयत्। तेन मादकपदार्थविरोधी त्रिवार्षिक राष्ट्रिय अभियानस्य आह्वानं कृतम्। गृहमन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनेन 100 मादकसञ्जालानि खण्डयितुं, 100 अपराधिनः भारतम् आनेतुं तथा 100 अवैधिक प्रयोगशालाः विनष्टं कर्तुं उच्चलक्ष्यं विनिर्धारितम्। नवदेहल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स महाविद्यालयस्य 100 वर्षे सम्पूर्णे सति आयोजिते शताब्दी समारोहे प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन जेन्जी युवा उद्यमिनः प्रोत्साहयितुं उच्चलक्ष्य धारणस्य मंत्रो दत्तः। तेन प्रोदीरितं यत् भारतीय मेधा जागतिक व्यापार जगत् नूतनां दिशं दर्शयति। एआई प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन च देशः आर्थिक समृद्धिं प्राप्नोति।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: आर्थिक दृढ़तां प्रतिपादयन प्रधानमंत्री अवोचत यत् पश्चिम एशिया संकटावधौ अपि भारतेन 7.8% यावत् अभूतपूर्व संवृद्धि मानमर्जितम्। अनेन भारतस्य आन्तरिक शक्तेः परिचयः लभ्यते। तेन प्रख्यापितं यत् वैश्विक संकटेषु भारतस्य दृढ नीति संचालनमद्य जागतिक स्तरे श्लाघनीयं वर्तते।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि मेक इन इंडिया अभियानम अभूतपूर्वम परिवर्तनम साधयतीति प्रधानमंत्री अवोचत। अनेन अभियानेन भारतमद्य प्रमुख निर्यातक राष्ट्रम अभवत्। असौ न्यगादीत यत् स्मार्टफोन क्षेत्रे 2.5 लाख कोटि रूप्यकाणां निर्यातं सम्प्राप्तम्। रक्षा उत्पादने च 2 लाख कोटि रूप्यकाणां नूतन कीर्तिमानं स्थापितम्। भारतस्य भौगोलिक अखण्डतां संप्रभुतां रेखांकयन् विदेश मन्त्रालयः संयुक्त राष्ट्रस्य मानचित्र प्रस्तावे स्वपक्षम् उपस्थापितवान्। मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रिय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपि तु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकम

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी, जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: 2 टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने, फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है।

0: वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने चार विक्टिम्स को निकाला है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
2: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
2: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1,19,00,000 किलोग्राम से ज्यादा पकड़ा गया। उसका मूल्य 1,89,000 करोड़। 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
6: और 60

0: అవర్ థింకింగ్ అవర్ యాక్షన్స్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్ బై వన్ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ బ్రెయిన్ డ్రగ్స్ షుడ్ నాట్ డిటర్మైన్ వాట్ వీ షుడ్ థింక్ అవర్ బ్రెయిన్ షుడ్ డిటర్మైన్ వాట్ వీ షుడ్ థింక్ అండ్ యాక్ట్ దట్స్ వై వేర్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ సేయింగ్ సే నో టు డ్రగ్స్ నాట్ ఓన్లీ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ది డ్రగ్స్ యూ షుడ్ నాట్ అలౌ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్సో షుడ్ నాట్ టేక్ డ్రగ్స్
1: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉ यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर हैं और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
5: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और

0: घर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President C.P. Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India's growing startup ecosystem beyond metropolitan centres, stresses stronger science, startups and industry linkages. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches maiden title at China Masters in Shenzhen. And now the news in detail. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said, relief and rescue operations are continuing on a war footing. Ms. Gupta said, those found responsible for the incident will not be spared.
3: Whether it is the building owner or any official found responsible, guilty will not be spared. It was an old building and was undergoing construction and renovation, and excavation in the basement reportedly caused a pillar to shift, leading to the collapse. The building was being used as a paying guest accommodation with children inside. All agencies are working round the clock with saving lives a top priority. The rescue operation will continue with full resources and all officials are present at the site.
4: Sabhi adhikari yahan upasthit hain aur kisi bhi tarah ki koi kami nahi hogi.
2: Later, the Chief Minister visited All India Institute of Medical Sciences AIIMS Trauma Center to meet the individuals undergoing treatment at the hospital. She instructed the team of doctors to ensure every necessary medical assistance. Ms. Gupta said the Delhi government is also in contact with the families of victims. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरिय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एन आर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरिय अखिल भारतीय संगीत सभा वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एन आर प्रशांत।
0: श्री एन आर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एन आर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।
1: श्री एन आर प्रशांत इज अ डिस्टिंग्विश्ड वोकलिस्ट इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक रेनाउंड फॉर हिज इनोवेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड exceptional contributions to the field. Shri N. R. Prashant's musical journey commenced in Bengaluru under the guidance of Vidwan R. K. Padmanabha. Inspired by stalwarts like Shri Tittai Krishna Iyengar, he pursued his advanced training under the tutelage of Vidushi Neela Ramgopal. Subsequently, under the revered mentorship of Professor R. Vishweshwaran, he gained a deep understanding of the subtle nuances of Carnatic classical music. He earned a degree in engineering in instrumentation technology from the University of Mysore. He is currently a prestigious A-grade artist of Akashvani. A distinct and unique highlight of his musical journey is the successful presentation of the Ekaraga concert series. In the year 2001, he was invited and appointed as a senior faculty member at the Singapore Indian Fine Arts Society.
0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: In tonight's broadcast, he is accompanied on the violin by CV Shruti, on the mridangam by A Radhesh and on the ghatam by Sharad Kaushik.
0: श्री एन आर प्रशांत अपने कार्यक्रम का आरंभ स्वाति तिरुनाल की रचना से कर रहे हैं नरसिंह मामवा, जो राग आरभी खंड चापताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत बिगिन्स हिज कॉन्सर्ट विद द कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल नरसिंह मामवा।

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ए राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।

0: broadcast of Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharad Kaushik.
1: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया.
0: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है.
3: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
4: ఆశుతోష్ మిశ్ర. नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
5: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था. बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई. पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है. हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए. दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ.
4: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी. एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है. उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है. असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए. असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है. कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं. ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया. ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया. इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया. इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं. परिवहन मंत्री रूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई.